0: somla kena shine pes kirang po mo chu chu jo chi the da
1: kirang ni ge shine nga ti yu ga le ge ze yu me xie suan ya ya yao chen ni
0: somla ta jian na
1: yao chun su ye
0: yao chun su ga le xi su
2: ma rang ge ngi ni tan xiao su ju
0: ga le xi su
2: 那那年前的人你这么恰恰我那一没事那多你没吧都是的给你抢不着抢这么了不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什么了给人给你做不着不打车子什
1: ये रंग करो जगा ची रंग करो मुझे चिता सगी
0: सुमला ये किरण क्यों यू किरण के ले यो मारी जबा
1: दीदी इनको चो ये तुम तो कौन लो पम्सा दे ठंडे ठुजू लो सिमलेम जे लुलु जे दे उजे मिशन दा सुचे तुम यो को मारी सले भी
0: यहू सुशा
1: चेन रंग आ शू दा जिमा रंग दा जो दा मुठे या जो चिंग इन बा या ना बेत जो चिंग इन बा
2: कुनी चाम से चे चे हा क्वा यो मारी
1: 我呀，求求。